0: कलयुग पुत्र कलयुग दे विच ओ बंदे नूं तू चंगा मन्नी जिहड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओ तो डरी क्योंकि ओ बंदा बड़ा चंगा है जिहड़ा सच दी विचार करेगा की खाणा ते की नहीं खाणा ओ बंदा भी चंगा ओहदे कोल ना ज्यादा जाई तंग ना करी ओहनूं अपनी नारी विच सती बरता होवे ते अखाज दे खाण विच बिरती विच बरागवान होवे ते चित विच सच करके धार लै गल ऐसे पुरुषां नूं कदे तंग ना करी
1: सतजुग मेरे सिर बसो पुजा बसो तित्रे
0: कहने सतजुग तां मेरे सिर ते बसदा है कहण लग्या ब्रह्मा बाहां विच मेरे त्रेता वसदा है
1: द्वापर बसियो जंग मम तू चरणन को से
0: जिहड़ा द्वापर है युग ब्रह्मा कहिंदा इह मेरियां जंगां विच वसदा है अते जिहड़ा कलयुग है इह मेरे पैरां विच वसदा है
1: अंग अंग की मुक्त ए वेद मांज लिख देन
0: कहिंदे इस तरीके दे नाल जिहड़े ना वेद विच इह गल लिख दित्ती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है कलयुग विच किवें मुक्ति होनी है सतयुग विच किवें होनी है त्रेते विच किवें द्वापर विच किवें सारिया युगां दा आपो अपना धर्म है सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों युग तीनों दिने कल केवल नाम आधार कलयुग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे
1: सो साची भले सकल समाला कीन
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओहो पिछे कही गल सच्ची है ओ गल भली है सारी दा संभाला तुहानू करा दिता है पा अथवा तुसां समूला कर लिया याद कर लिया मैं तुहानू दस दिता कि मेरे समय विच की वर्तारा वरतेगा
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक एक कल्प जेड़ा हुंदा है एक कलम जैसा हुंदा कि दस युग जदों लंघ जांदे ने इस तरीके नाल अपनी करमी आपो अपनी करके फिर मेरे कोलों सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने ये वाक ब्रह्म संहिता विच कहे हुए इन्होंने लए ने कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल चार वेद ये सारिया चीजा जिहड़ियां ने ये सुनाईया कलयुग ने आके महाराज नूं
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहने अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने परा बाणी पसंती बाणी ए सारियां बाणियां दे जाप
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप
0: फिर जिहड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है फिर इसे प्रकार बैखरी बाणी बैखरी मुंह नाल बोल के जिहड़ा जाप हुंदा मदमा कंठ विच हुंदा पसंती फिर हिरदे च परा बाणी नाभी च ते इसे प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट
0: तो नारायण देव जेड़ा है ए परा बाणी दा है मालक ते जेड़ा नर है ए पसियंती दा इष्ट भाव जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहिंदे ने तो इस तरीके नाल कहिंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा ए नर आप है नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन
1: स्वास ठहरावै नाब कर उठे तरंगी तोज
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाब दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरु करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज
0: तो नाम भगत दी जुगती यह दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरु करो यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने आप ही फिर हिरदे विच चलिया जांदा फिर धुनी विच जाप चलिया जांदा फिर रोमां विच जाप चलिया जांदा ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਮ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਬੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੜੁੱਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर, तुहाडा जिहड़ा जस है उह तां हुण खीर समुंदर तों वी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कहके संदेश जो,
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है इह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तां बहुत, असीं किवें कह सकदे आ तुहाडा तां जस पहलां ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लै के मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राखियो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा,
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते के बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: इन सुन सुन कर सुजस बडेरा,
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने, छंद बंद सुंदर गत लेने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच, ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते अते भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीठ हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने वी इह कोई चीजा नहीं हुंदियां इह फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहीदा समझा उन्हों का डट के आपां मुकाबला करना चाहिए गुरबाणी के नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिए महाराज ने इत्थे जपजी साहब का इसे करके महात्म दस्या
1: मन जीतन रण मैं धरा राज काज सुख
2: राज काज दे विच मैदान जंग जान दे विच राजनीति दे विच बाणी तो हर जगह ही सहायता करती है जेड़ा मर्जी महाराज जी तो आपा मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राज योग उत्साई
2: बंद मैं बंद हुंदा रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिलना गिलना वह तो आपां नूं पता ही है कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़दे हम घर साजने आए बाणी ही पढ़दे हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब का पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करती है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करती है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाक है बस है कामतेना कामतेन जपजी साहब दे बस विच ही है फिर आप कामतेन नूं कहनूं देखना है जां कल्प ब्रिछ वल कहनूं देखना है जां किसे होर वल क्यों देखना है महाराज कहिंदे फिर भाई जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा है उहदा तां सिद्धा ही मतलब है कि उहदियां सारियां इच्छावां चाहे वह रजोगुणी है चाहे वह सतोगुणी है चाहे वह भगती है चाहे वह योग विराग ज्ञान उम्र का वाधा मंगिया चाहे घर का कोई काम है चाहे परलोक का कोई काम है सारे कारजा में जपजी साहब की बख्शिश हुंदी है
1: इन कारज की अटक मैं पंच पचीसा जाप
2: हुण इन्हां कारजा में जिहड़ा अड़िका पै जांदा है सो इस करके कहिंदे ने मूल मंत्र दा ही मुख है कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है ना वो तुसीं अभ्यास जां तां समां रख के करो बई रोज घट्टो घट दो घंटे मूल मंत्र मैं पढ़ना है जां फिर नवे बंदे लई माला बई माला कुछ रखो बई मैं इन्नियां माला जिहड़ियां ने हर रोज करनियां ने घट्टो घट दस ग्यारह पंद्रह भी पच्ची माला मूल मंत्र दियां अभ्यास वजों करनियां ने जे आपां थोड़ा करदे हैं मूल मंत्र ते आपां कम्मां दी इच्छा बहुत करदे हैं इस करके क्योंकि गृहस्थी दे कारज ही बहुत ज्यादा हुंदे ने तां ते सतगुरु महाराज कहिंदे मूल मंत्र दा अभ्यास जिहड़ा है वह थोड़ा ना करो हर वक्त पंजां प्यारे ने तां इही हुक्म कीता जद अमृत छकदे हैं भाई देखो अमृत वेले पंज बाणियां तो पढ़ लईयां हुण बाकी दा समा की करना सुखमनी साहब आसा दी वार ते चलो डेढ़ घंटा लग गया बाकी फिर कहिंदे मूल मंत्र ते गुरमंत्र उठदे बैठदे श्वास श्वास इन्हां दा जाप जिहड़ा करन नूं पंजां प्यारां दा हुक्म आपां नूं उही इत्थे दर्शाया भी हर वक्त मूल मंत्र दा अभ्यास करदे रहो
1: छत्ती अठत्ती जाप कर लाख अर्ध ते लाख
2: हुण इह जिन्ना कु कारज है कम देखिया जांदा कम है इन्ना कम है पंज हजार मूल मंत्र है पच्ची हजार दा जाप है छत्ती हजार छत्ती अखरा भाव पुरातन समय विच छत्ती अखरा नानक होसी भी सच तक है पच्ची अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारे ने बख्शिश कीता है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादा सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट पांच छे माला रोज कर देनिया चाहिए या ग्यारह माला ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਜਾਂ 5 ਪਾਠ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

0: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
1: कलयुग दे विच इक्को ही गल याद रखियो के निश्चय वाला ता पार होवेगा, एक वाहेगुरु दी शरण ग्रहण करियो बस, होर कोई कम ना करियो। गुरसिखो ध्यान रखियो, वाहेगुरु दी शरण ग्रहण करियो।
0: वाहेगुरु ए मंत्र जप सगल सरेंगे काम।
1: अरे सारे जाने जपो सतनाम श्री
0: वाहे गुरु साहिब जी,
1: सतनाम।

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो ये भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून के मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी, ताइयों खालसे नूं बख्श

0: जिन्हें मौत का भय नहीं रखा माड़े काम किए ने वो बंदा नहीं तरिया।
1: आदे की उपमा बुरे बुरी खुशामद नित
0: खा के उपमा करी जानी खुशामद करनी फिर खुशामद करके किसी तो खाना फिर इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां ने कल युग दे विच इहने ऐसियां नहीं करनियां एवें खाम खां खा के फिर उपमा करनी भई बहुत अच्छा सी भी अगे वास्ते भी आवांगे तेरे को फिर भी खवाई खुशामद करनी महाराज कहिंदे ऐसियां गल्लां तुसीं नहीं करनियां हन।
1: बुरा बहुत बोलन अधिक बुरा परबती मित
0: बहुता ज्यादे बोलना भी माड़ा है इस करके एक तां बहुता बोलना नहीं बहुत ना ही बोलना रोज कहने श्री आनंद साहब दे विच एक परबती का बहुता मित्र नहीं बनना परबती ऐसे ही हुंदे ने
1: नाम न छोड़े शास्त्र हित सिख संभाला हो
0: एक तो मेरा सिख जे बनना एक तो नाम ना छड़े नाम जपी जावे एक शस्त्र नाल प्यार जरूर करियो शस्त्र दा हमेशा त्याग ही करदे हुण केड़ी चीज ग्रहण कीती होई है इशनान है तां डरदे ने सवेरे नहीं उठदे शस्त्र दा त्याग करी फिरदे ने कृपान चुभदी है सानू असीं तां नहीं पाउंदे नाम भी चुभदा नाम भी नहीं जपदे तो महाराज कहिंदे फिर मेरा कहड़ा सिख है जे नाम जपेगा शस्त्र ग्रहण करेगा ककार ग्रहण करेगा फिर सिख संभाला हां कहिंदे फिर मैं उन्हू हमेशा याद रखांगा।
1: मुझे तर्क ना कीजिए मेरी करे न सो
0: महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे मेरी सौ नहीं कदे खाणी इस करके जिहड़ी मेरी सौ खाणी है ना इहदे नाल नुकसान हुजतां ते तर्कां ना करे कदे भी मन दे अंदर लोकां नू हुजतां करी जाणियां तर्कां करी जाणियां ऐसा कर्म ना करे। सो इस प्रकार साध संगत जी महाराज ने बख्शिश की है बहुत कुछ समझाते हर रोज सतगुरु मेहर करे इन कह रहे सिखी इनी डूंगी है सिखी ओदा तो बथेरे सिख फिरते हैं देख के कई बार मन च आ अखबारों भी बैठे बथेरे अखबारों फोटो देने वाले सिख आप भी बैठे हैं होर भी भाई दीवा लैके लभी है तो सिख कितने सिख लभदा है जिसे इन्ने गुण हो इस करके महाराज सच्चे पातशाह अगे बेनती करिए महाराज सानू भी सिखी बख्शो नाम की दात बख्शो जे सिखी नहीं बख्शनी तो महाराज सिखां की धूड़ बख्शो गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी।

0: छेवे छेवे तो सतवे सतवे तो अठवे अठवे तो नावे नावे तो दसवे फिर नानक लीन भयो। वो नावे तो यात्रा करके गोविंद विच भेद हो गया, जिंदा जागदा बाबा नानक बैठा है गुरु ग्रंथ साहब। ये श्राद्ध किन्हां दे करी दे जिंदिया के मरिया दे, अजे सानू ये भी पता ना लगा असी बाबे नानक दे भी श्राद्ध करी है।
1: आ भी गल असी रिपीट करी जाने आखो वाहिगुरु 300 साल हो गए जदों गुरु बोले प्रभु तेरा हमें ब्रह्म सत्ता जी जो बुलावे क्यों बोला स्वामी कुदरत कमन हमारी जो प्रभु की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी जब सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार जिना सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार कोई मान सजून ना आखियन पशु ढोर गवार पशु ढोर गवार जिना सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार शब्द ना कीतो विचार नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो शाह चाहे नमो महा माहे नमो शाह शाहे नमो महा माहे वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। राजवाड़ी के आखो जी वाह।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड प्रभु ध्यान दियो जी जग दियां रूहां अकादरता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आप बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर टर इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नू टिंडा बना महाराज इस माल नू खिचे कौन अकादरता बख्शे इस माल नू तू आए नू खिचे कौन कहते इस पीतर मन योग सरवण किया इस पीतर बलदा की जगह ते इन खिचण नू किनू जो उच्चा कौन किनू जो मन नूच जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नू बलद बनाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं भी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तू मन नू जोड़ के इन्हां टिंडा नू खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत सिंचो भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछया महाराज शरीर ते केड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम महाराज खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दियां अमृत ना भर दिंदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पेगा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस श्वासा की माला बना मगर यह जे बरतना होया जे मन नू तू ना विच जोता सिमरन विच मन नू ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नू विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

आदमी नहीं, खुदा भी नहीं है। रब की मर्यादा चलाने अपने पुत जिथे वारे ओदा तीर्थ किथो लभोगे। मगर मैं कहन लगा सा कुछ शिकारी ने।

0: जी, बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी आ

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

अपने अंदर झाती मारो, धन गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी अनुसार जीवन ढालो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो। ये हर हर कथा निराली कथा है, प्यारी कथा है, जिधर गुरु तोरदा है उधर चलो। सो सिख सका बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, हुक्म विच आवे गुरु दे ते, अपन भाणे जो चले भाई, ओ विछड़ चोटा खाए, विछड़ के चोटा। आ सारा संसार अज क्यों दुखी, सारे संसार दे दुखां दा कारण कही है इना पंजवें बापू दा वचन नहीं मनिया। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, इना पंजवें बापू दा वचन नहीं सुनिया। परमेश्वर ते भुलिया

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वचन नु समझो। कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुरु पूरा सुख दाता, मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी। सारे आखो कादा सुखां दा दाता है, सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाईए। इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु आ सुखां दा दाता है। ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवजो देवनी चाहना है। कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल, केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है, पवित्र करदा है। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसी ए वचन पढ़दे हो भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुर चरण बिहारे। ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, आ जे बंधन काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया, कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन, ऐसा फस गया ऐसा फस गया। कहिंदा इत्थों ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा, मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है, ये छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं। कोई कहिंदा लोभ मेरे को छड्डिया ही नहीं जांदा। ऐसा लीन हो गया, इहदी गुलामी विच फस गया। ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा। ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हे हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिक दारा पंचे मांगे हाला। सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ते पंजे ही मेरे को आके मामला मंगदे ने। आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हे महाराज इना दुखी करदे ने, इतना दुखी करदे ने, मैं किसी दी जमीन भी नहीं बोई, ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने। हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी। हरी दे लोगो सत्संगियो मेनू एक एक नित नित हर दिहाड़े मन रूपी पटवारी इना पंजा दी फौज लेके आण के सब कुछ लुट के लै जांदा है। ते महाराज मेरी कितों पेश नहीं जांदी, ते हुण वास्ता पाया सो उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया। पहली गल ते जिनू ए सुध आ जाए, जिनू ए चेता आ जाए के गुरु के प्यारे हो मैं लुटिया जा रहा, मैं इस गल का पता भी किन्नू लगा। आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एक तां ते तीसरे बापू ने वचन कीता एकाग्रता बख्शो इस देही अंदर पंच चोर वसे। बोलो इस देही अंदर केड़े केड़े जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, ए पंच चोर वसदे ने इस देही विच। मगर पता किन्नू, घर दे विच ते कोई चोर आ जाए ते ओदी रबट लिखाउण जाने आ जी मेरे घर चोरी हो गई चोर आ गया। हालांकि की चीज चुकी, टीवी चुक लिया $500 दा हो $1000 दा हो ओदी रिपोर्ट ते करवाने आ। मगर जिस घर विच 24 घंटे पांच चोर लगे ने, कदी एदी रिपोर्ट लिखाउण गए हो? कदी आख्या जे जाके हर के लोगा मौको नीत दसे पटवारी? कदी रोए हो गुरु दे अगे? कोई बच्ची दसे, कोई भरा दसे, कोई गुरमुख प्यारा दसे? जितना गुरु नानक पातशाह दी बाणी ने आख्या उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया। मैं बाहवां खड़ लिया उच्चियां, बाहवां उदों खड़ियां करी दियां जदों हार जाइए। आखो सतनाम श्री, चेता करियो जदों जंग हुंदी आ दोवां पासिआं तों ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਵੱਡ
ਦੁੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਥਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ। ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੌਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ।

कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न भावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे, उन्हां ते शतर अनेक चलावत कहावत तन एक ना कितना रखदा जी कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा, राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे, माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बलदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुट्ठा मूंह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा, मगर उथे ए जप रहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

0: हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ। सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ। सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना। ध्यान दियो, तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वो तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती, तोतिया पोस्त नहीं खाना। ते सारे ही तोते उड़दे उड़दे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए ते सारिया ने चुंझा भरिया, पोस्त खाई जांदे ने ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी ओह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है। नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते जाणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी। इस तरह का नहीं, बार बोलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ। घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आउण बाबा फरीद दी रसना तो मुबारक वचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली होए जाए।
0: बस इस गल उते असी अटक गए सारे। आखो सतनाम श्री
1: वाहिगुरु।
0: इत्थे आण के कई बार मत्था टेकन लगे भी सोची दा मत्था थले ना लाइए, पग ना मैली हो जाए। किते भाई गुरदास जी नूं पढ़ के वेखो, होए नमाणा टह पवे, होए नमाणा। इत्थे जदों आवे ना ते मैं एक बार आप जी नूं बहुत बार बेनती कीती, क्योंकि दो तीन साल तो आप जी दे जोड़े झाड़दियां समा हो गया है। दास ने कई बार बेनती कीती, सज्जनो जे नवा घर बनाउणा होवे ना, नवा घर ते पहले घर नूं की करना पैंदा है, की जी सोचो, ढाउणा पैंदा है। जे पहला ढवे ना ते उत्ते नवा कि तरह बनू। जिहड़ा परमजीत सिंह हंकार ना भरिया वा, गुरमुखो प्यारियो जे गुरु दे अगे आण के टह ना पिया ते गुरमुखां वाला जीवन गुरु कितना बख्शू। पहलो हंकार रूपी महल नूं ढाउणा है इत्थे आण के, पहलो टह पवां। एक थां गुरु अमरदास महाराज पातशाह ते मालक ने संसार दे सृष्टि दे भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा दोहे बन आवे। किते पता नहीं किन्ने रंग विच रत्ती गई होगी अंदर आत्मा, रब्बी रंग विच जदों कह रही होगी होए।

0: पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुर पास,
1: पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुर पास
0: जी, पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुर पास,
1: पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुर पास।
0: ओए नमाणी तै पवां, नमाणी होके नमाणी आखा अपने आप नू, महाराज मैं नमाणी हां, मेरा कोई मान नहीं, साची लिवे बिन ए नमाणी हां, दे महाराज तेरे चरणा विच टह गई, आण के इनू शब्द बख्शे, शब्द लाग सवारिया, इनू शब्द दे नाल जोड़ दे जिहदे नाल इहदा जीवन सवर जावे। ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने, मैं ते भुल्या रहा कि जे किते तै पिया, नीवा हो गया, धरती ते मत्था टेकिया, खुदा नू नमस्कार कीती, किते मेरी चिट्टी पग ना मैली होए, मैं भुलावा पग दा, बोलो मैं भुलावा
1: पग दा,
0: मैं भुलावा पग दा, मत मैली होए। बहुतियां नूं सानूं इह ही रहिंदा, जिन्हों किसे नूं कह के वेख लो जी जूठे बर्तन साफ करियो, कहिंदे जी करन नूं जी ते करदा, कपड़िया ते छिट्टां पैंदियां। एक गुरु दा सिख आनंदपुर साहब ऐरकां दसंबर दे विच आनंदपुर साहब सतगुरु गरीब नवाज दे चरणां च जाण दा मौका मिलिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छो प्राप्त की है, पावन धरनी नू करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ करोड़ जन्म करके नमस्कार। जिथो सिखी का जीवन आपां नू खालसाई जीवन मिलिया, उथे बाबा लाभ सिंह साहब साहब के बाबा सेवा सिंह साहब के लंगर विच एक गुरु का सिख बड़े सुंदर कपड़े पाए, ते हर गुरसिख की आण के थाली चुक के ते थालियां चुक के साफ करदा फिरे। एक सब्जी का छिट्टा उठिया ते उहदे सुंदर चिट्टे चोले दे उत्ते पै गया। आखो सतनाम श्री, नहीं गज के आख्या करो, वजन बड़ा कीमती आ। आपां हौली उदों बोलदे आ जदों गैर हाजिर हुंदे, जुड़ के आखो सतनाम श्री। सब्जी दा चिट्टा पै गया चिट्टे चोले दे उत्ते, ते किसे ने लागों आवाज दित्ती, गुरु दे सिखा तेरे चिट्टे चोले ते चिट्टा पै गया, दाग पै गया दाग। कहिंदा सज्जणा ओ जिहड़ा मेरा बापू आ ना वेखण वाला, ओनू पता वा कि ए दाग कित्थों लगा ते दूसरे दाग कित्थों लगदे, जेड़े दाग ओ इक ओ नेड़े ठेके चो लगदे, दाग दोष मुंह चलिया लाए, पढ़दे हो ना दाग दोष मुंह चलिया, जेड़े दोषां दे दाग लगदे ने मेरे गुरु नूं ओहदा भी पता है, ते मेरे गुरु नूं इस दाग दा भी पता वा कि ए जे सोड़े झाड़दे आ जूठे बर्तन साफ करदे आ शरीर दे उत्ते पिया वा, ए जड़े दाग लगे ने, ए जड़े छिट्टे पए ने, इन्हां छिट्टियां वालियां नूं ते मेरा कलगीधर पातशाह गलना लाउंदा गलना। ते बाबा फरीद कहिंदा जदों मैं कदी नीवा होण दा जतन कीता ते मैनूं ए भुलेखा रहा कि किते मेरी पग ना मैली हो जाए, मगर मेरी पागल रूह ए नहीं सी जानदी। हां जी,
1: गहला रूह न जानई सिर पी मिट्टी खाए।
0: बाबा फरीद जी कहिंदे मेरी रूह गहली, मेरी कमली रूह ए नहीं सी जानदी कि तू ते किना किते पग नू मिट्टी ना लग जाए, ए ते सिर भी एक दिन जेड़ी सिर दे उत्ते तू ए सुंदर पग बधी है, ए सिर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाणा, मिट्टी ने कबर दे विच दग देना है। जै सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार काग, कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। ए सिर दा मान, ए पग दा मान करदा है ओ भोलिया, ए शरीर भी एक दिन मिट्टी ने खा जाणा है, ए शरीर भी जां ते लकड़ियां ते सड़ के सुआह हो जाणा है, ते जां कबरदियां विच कितड़ियां जुग वापरे, इकत पया पास इट सराणा पोए सवण, कीड़ा लड़ियो बोल सोली कीड़ा लड़ियो। एक दिन ओ जिदन आउना है जिदन कबर पुट्टी जानी है, कबर दे विच तेनू लटा देना है, उस कबर दे थले सराणा नहीं होना तेरे थले, ते तेरे सिर दे थले इट रख देनी, इट सराणा पोए सवण, ना कोई थले तलाई विछाउणी, तेनू मिट्टी उत्ते ही सवाउणा है, मिट्टी नू मिट्टी उत्ते ही पा देना है, इट सराणा पोए सवण। सजना कीड़ा लड़ियो मास, फिर कितड़िया जुग वापरे, इकत पया पास, किन्ने जुग बीत जाने ने, तू मिट्टी विच मिट्टी हो जाना है, इस मिट्टी तो ना डर, ए ना सोच के जे मैं जोड़े झाड़ूंगा मेरी पग नू लग जाणगे। सजना ए जोड़िया की धूड़ी जड़ी है ना, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ
1: ਧੂੜ ਦੇ,
0: ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਕਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਰਵੈਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਚੇ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂੜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ
1: ਇਸ਼ਨਾਨ,
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ ਸਰਣੀ ਪਾਵਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਆ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ,
0: ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਨ ਕੀ
1: ਧੂਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ,
0: ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
1: गुरु अगे कृपा करो, बेनती करो, हे मेरे सतगुरु ऐसा रंग चाढ़ दे। एक बार जेड़ा रंग कह दे काया रंगन जे थिए प्यारे पाइए नाओ, रंगन वाला जे रंगे साहेब, रंगन वाला जे ऐसा रंग कहते एहो जिहा रंग चढ़ दे। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जदों फरखीर ने फड़िया ते गुरु दे सिखो कहते अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ियो, अपने वड्डे वडेरिया का इतिहास पढ़ के उत्ते गर्व करिया करो, माण करिया करो। उहदे उत्ते 700 साथी दे नाल जदों फड़ के खड़िया ते रोज वारी सिर गुरु दे सिखां दे सिर कलम कीते जांदे सी दिल्ली चांदनी चौक। आखिर जो सूरमे की वारी आई पिंजरे दे विचो कढ़िया ते इतना बहाड़िया सी, जंजीर मारे सी ते चार चफेरे पहरा सी ते आखण लगे हुण दस गुरु दे सिखा, एक पासे मौत ही एक पासे गुरु ही, दस की चुनना ही। ध्यान दिओ, सिखी जदों परखी गई पता नहीं कितना दी हुण आर्टिफिशियल जी सिखी बन गई है। निक्कियां निक्कियां गल्लां ते शराब दी गलासी ते सिखी डिग पैंदी, नाई दी दुकान ते सिखी डिग पैंदी, 2-4-5 रुपये मिल जाण कौडियां दे पास सिखी विक जांदी है। अज दा सिख सिख कमाउंदा कितना है, इहदे मन विचों श्रद्धा टुट क्यों नहीं गई है। दो गल्लां रख दित्तियां, एक पासे सजणा आ तत्ता कीता जमूरी ते तेनू असी मौत भी यह नहीं कि गोली मार के मार देना है, इस जमूर दे नाल तत्ते कीते नाल तेरा बोटियां नाल मास तोड़ना है। ध्यान दियो, अज मैं बच्चे नू दस रहा सा ते कहिंदे इतना उन्हू शहीद कीता है। मैं कहा गुरमुखा कि पढ़ के वेखो उहदा इतिहास, इतना गुरु का सिख बह गया ते जलाद लैके जमूर इतना इतना आ वेखो तोड़ तोड़ के तत्ते जमूरां दे नाल बोटियां मास दियां तोड़ियां ते हर बोटी टुटन दे नाल कहिंदा सी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। जे को किसे नू नशा चढ़दा है ना किसे दे प्यार विच आण के उहदियां अखां विच नेत्रां विच लाली चढ़दी जांदी सी ते बोटियां तोड़ तोड़ के जदों खूनो खून कर दिता ते फिर भी गुरु दा सिख ना डोलिया। ते फिर जलाद कहण लगा बाबा बंदा सिंह साडे कोल इक होर तरीका हैगा है तेनू मौत दे खौफ तों वी ज्यादा डराउण वाला। ते गुरु दे सिख ने नेत्रां विच खून भरिया सी आख्या ओ किहड़ा, ते फिर 4 साल का पुत लिया सामने आखो सतनाम श्री। इतिहास के पन्ने पढ़ो, बाबा बंदा सिंह बहादुर का 4 साल का पुत लिया। आखन लगे ए पुत केदा है, कहन लगा सतगुरु का बख्शिया दास का पुत है। कहन लगे फिर तेनू ए ते तेरी कमजोरी हो, ए ते तेरी वीकनेस होगी, एदे वल वेख के तू सिखी छड़ेगा। कहन लगा नहीं ओ सजना, एदे वल वेख के ते रंग होर चढ़ गया, एदे विच आण के ते रंग रंगण वाला जे रंगे, ए रंगण वाले ने रंग ही ऐसा चाढ़िया वा, ए ते घटो घट चढ़ना ही चढ़ना है हुण। ते फिर ऐसा कीता उन्होंने आखिया असी इस तरह करना ही, तेरे पुत्र नू तेरे सामने कतल करना ही असी। हुण दस गुरु प्यारा के मौत, उन्हें कहा गुरु प्यारा वा मौत दा मैनू कोई डर नहीं। ते गुरु दे सिखो इतना सामने लिया के पुत पाता लम्मे ते इतना तिखा छुरा लिया के जलाद ने आख्या वेखना हुण दी घड़ी हैगी, गुरु दा खेड़ा छड़ दे, दीन अमान कबूल कर ला, मुसलमान बनना मन ला, हुणे तेरा पुत छड़ दांगे। पुत रोज नहीं मिलते, पुत बड़े मिठे बेवे ही। उन्हें कहा सजना जेड़े गुरु ने दिता सिखी भी गुरु दी, ते सिखी कीमती, पुत नालों सिखी कीमती। उन्हें कहा अच्छा फिर इथो लिया जलाद ने, तुसी कदी उतरा दी फोटो वेखी होगी, इथो लिया जलाद ने तिखा कीता छुरा ते 4 साल दे पुत दे कलेजे च मारिया। ते जदों पुत कलेजे दे विच वज्जा छुरा ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर आखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह कृपा रखी अपने दास दे उत्ते, इस इम्तिहान दे विचों पास कर लई। कदी तू चमकौर दी गढ़ी विच आखिया सी सारी दुनिया अपने पुत नूं कंडा भी वज्जे ते होका लैंदी, मगर जदों अजीत नूं तोरिया मेरे कलगियां वाले पातशाह ने, ते एक अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा है कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या अजीत सिंह हसरत है मुझे, हसरत है मेरे मन में, शौक है हसरत है चाहत है, ਤੇ ਪਿਓ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਸਰਤ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕਿ ਬਰਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਤੁਝੇ ਦੇਖੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਨਮੋ ਖੋ ਕੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਨਾ ਖਾਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੋਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਛੁਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਰਫਣਾ ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਖਣਗੇ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਿੱਖੋ ਐਡਾ ਤਪਸਵੀ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇਤਨਾ ਛੁਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਘੋਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆ ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਛੁਰਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਡਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे, कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार विच आण के, गुरु सत्कार विच आण के, आप जी सरबत माई भाई तनता दे जोग राजान राज पानान पान देवान देव महान सतगुरु के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं। समस्तल कलाम सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दीन दुनिया के मालिक पातशाह जी चरण शरण विच आण के आप जी ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल जिथे गरीब नवाज पातशाह दी बाणी सरवण कीती, नितनेम साहब सरवण कीता है, उथे कीर्तन विच आप जी सरवण कर रहे। सो भाई रे राम कहो चित लाए, बोलो भाई रे मन नू मुखातब करके भाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो शौ देखे पति आए, हरी दे जस दा सौदा करके जाओ भाई, परमेश्वर खुश होके आप जी नू गल नाल लावे। शौ देखे पति आए, सतगुरु गरीब नवाज आप जी नू गल नाल लावे। मेरे सतगुरु जी अगे जाके जड़ी जोदड़ी कर रहे ने, आओ सारे पढ़िए वणजक।

बोले कौड़ा जेबा की फूड, कौड़ा ही बोल रह गया, मिठे बोल एदे कोलों उड गए, क्योंकि इन्हें ओ बंदगी नहीं की जेदे नाल इनू परमेश्वर दे नाल मिलाप हो जांदा। बाबा जी का वचन फिर एक बार मेरे नाल पढ़ लो, नाती

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंदी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दियां, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करांदा सी कहिंदे

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी अन झंझगात अन रंज बात अन झंझगात अन रंज बात वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ये तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थाओ ना ही जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनू मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दियां लत्तां खिंच दे एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन लेहो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दई एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दित्ती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दई इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तों लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोण नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैये जी ने वर्गे प्यारिआं नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बहिके एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकण वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बहिके लंगर छकण वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहण लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलों जिदन तो मैं नीवा पन लै लिया परमेश्वर कोलों ते मन जिहड़ा खराब करदा सी ये वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आखे सब कोए बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आखे एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिहदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगण यारी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारे ओ किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहिब दे अगे ओ साहिब दे अगे जाओगे जेड़ा साहिब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोड जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नूं दे के खिमा उहदे कोलों लै लिया उदन तो खरा खरा आखे सब कोई जे मके गया वा ते अंदरों बाहरों एक सा ओ अखां वालियां नूं नजर आ गया उहनां कहा खरा आ गया ओ पैरीं पै गए जिन्हां नूं खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालियां नूं सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालियां नूं सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरीं पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इन्ना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਤੋ